0: ngodihe eke megahertz tivehi FM.
1: ए कोडको फहत जेहिलामा आहारम यहा कैरी गति में मी है उदगो आन एना जा पिन नंबर नु फ्रेंड हिसाब है गनति बेवाणी
2: आ
3: कोबा मिता हुने डस्टबिन एहेरी दो मेवेस डस्टबिन कनु लामाणी

bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum nodeke megot de famat yon kola vant be me habe funa varang ofavre vagut kol kedam megadi khabara ko kuria dan khabara ko badal koli argun fatma wahida megadi khabar to ge terega indira gandhi memorial hospital ijmsk national cardiac center diha har furum fahaga ko fi me kamatta ka be virasmiya sarfer ko devi raiso jumhuriya ge amkamalon sajida muhammad ijmsk national cardiac center ga خدمت دین فشافاونی اتحاس 26 جولای ایوان احر می خدمت دین فشتا دیها هر فولی احر اجمیت کے نیشنل کارڈیک سینٹر گا خدمت دین فشافاونی اتحاس 26 جولای ایوان دوہ می خدمت دین فشتا دیها هر فولی احر می رسمیات کاونی راجے کا ہیتو کے بلتا کا فروادے یونٹ اوفدی گن یا گوتا ادی می خدمت فلا kure fava gut ke machang alil wala pafa adi national cardiac center ge a nama logo viswani iftitah ko fa a nama logo iftitah ko devi resul jumhuriya ge amkamalun sajida muhammad ajmsk ke national cardiac center ga service kadiru khidmat de gut kulli halat ka hit ke bali hunna mi hunna wagutum farwa de vene intizam bani hamachi fa ए सेंटर गे मसे के कामयाब कमा को कुरिया गेंगोस सरहदी फेमवरु का फरवा देमुंदा कमा आईजीएम चुंबुने कार्डियक सेंटर गे सबुं इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल आईजीएम च कुरा इतबार बोडे फावा कमा माले सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सीईओ इब्राहिम अब्दुल रज्जाक हालिम विदार वेचे National Cardiac Center diha ahar furum ke munasabat ka be virasmiyat ka wahak dakkamun Malay City Group of Hospitals ke CEO Ibrahim Abdul Razak Halim Bidalvi e center ge khidme feshi dohum feshi ge National Cardiac Center ki Malay City Group ke dashum hinga emme kamyab emme khasa ettan kama ए सेंटर गे मसेकत की नमूना खिदमत के काम फाह कुरवा अब्दुल रज्जाक विदालवी ए सेंटर गे खिदमत के फेमर रंगल कुरम के नतीजा की आमुं के इतबार कायम कुरवं कमा अब्दुल रज्जाक विदालवी ए सेंटर आय को कार्डियो वास्कुलर खिदमत के फेमर एता गुने उफली राज्य गाथी बेगें हितु गे बलित का फरवाली मुगे फुर्सत फाय फावा कमी बलिमी हु नलिबुन लुई फसे हे कमा जापान राज्य अन्न फतुरेरिंगे अदद इतुरु कुरुमा जापान गे ट्रेवल एजेंट हुंगे एसोसिएशन आ मशवरा कोफि विमशरा तकुरे गेंगुस फावनी राज्य जापान कनल वाफा हुनवा सफीर अहमद मखलूफ अदि जापान गे ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन गे राइस आक बेवी बतलुमगा राज्य जापान कनल वाफा हुनवा सफीर अहमद मखलूफ बनी जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स जाटागे राइस कुनिहर एबिनाया बदल कुरबाफा ए बदलुम का देखाम के देमित का फतिरकम के गुलुम ई तुरंग हरदना कुरमा मशवरा को फावा कम सफीर मखलूफ विदालवे मे मशवरा तव के तफसील हिस्सा कुरबा सफीर मखलूफ मिस मीडिया का हिस्सा कुर वि पोस्ट का विदालवे जापान राज्य अन्ना फतुरवेरिंग के अदद ई तुरु कुरमाशा जापान मार्केट का राज्य इश्तिहार कुरुं इतुरा फुला कुरुमा मश्वरा कुरुनु कमा फेनका कंपनी के कुरी के मैनेजमेंट का हंगाफा हुरे प्रोक्यूमेंट आ गुलुं हुरे मसल तव के सबुं इयाद नुकुरे वेवर के गेलुं लिपा एब हुरे कमा फेनका आगे मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद आफीफ हुसैन विदार वेचे कंपनी के इस बार अलग याद करूँगा फेनका के प्रक्रियमंट पॉलिसी या मुहिम बदल तक के नज़े कमा एमडी फाह करेंगे पीएसएम ने उसे देवी इंटरव्यू का आफिफ विदालवी कुरी के मैनेजमेंट तकों कंपनी तक के थी हो दुमगा एक शी के वामिंग पर बाला फानों मुझे सबों वर्ग की न दत्ती तक आकर में दबाकमा ख़रद बोलूँ फ़दा मसल तर दिमाग वाक में विदार्वे
ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಡಮ ಹೋದ ಪಾಹುರಿ ಬಯ ತಗಿತಿಗೆ ಫೇಮರು ದಬ್ಬೆಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೆನೇಜ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರು ಮೆನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಮಾಲ್ಕಮ ಏಕಂಗೆನಿಸ್ ಪಾವಾಕಮ ವಿಸ್ ಎಂ ಡಿ ವಿದಾಳ್ವಿ.

0: दोहा को सारे गीतों का जैसा सारो वादा नंता नो प्रॉमिस
1: प्रॉमिस एमी हम था अबादो एकु गवो मा बाउ दुवे.

0: ஏய் கொடுக்க ஃபாத்த ஜெயிலமா ஆரம்பி ஹா கேரி கத்தி மே மீ ஹா உதகு வாணு ஏனா ஜா பின் நம்பர் நு ஃபென் ஹிசாப் ஏகன் திபே வாணி
1: ஆ கோபா மிதா ஹுன டஸ்ட்பின் எஹரி தோ மே வெஸ் டஸ்ட்பின் கண்ணு லாம் வாணி
2: মামা হালু কিহনে
3: আলহামদুলিল্লাহ দারিফুলু মেঙ্গে হালু কিহনেতা
4: আহরামে মেস রাঙ্গাল মামা কোঙ্কামেতে তি কল্লানি গেনে মামা আহরামে আতা
2: মামা তি হাবুরকম উলেন কামনে আহরামে তি কাং কল্লা ফানো
3: দারিফুলু মেং হাই দরাঙ্গড়ে তিগুতা মামা গাতাং আস মামা হালু বালালা মামাকে কান্তত্তা কল্লে দেতি মামা ওয়ারং উফাবে
1: দিবিহি একদম গেনেস্তেনি
5: ভাইরাল ওয়াইফ
6: একি গয়কুতু মকবুল ইসওয়া লাভতকা একি চার্টতোগে এমএ টপ লাভতকা আদে মিনোনাস একি প্ল্যাটফর্ম তোগে এমএ ভাইরাল লাভতা
5: ভাইরাল ওয়াইফ
1: ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಗೆವೆಸ್ ಆದಿತ್ಯ ದೋಹುಗೆ ಮೆಂದುರ್ಫಹು ದೇಜ್ಜಹಾಯರು ರಿಪೀಟ್ ಹೋಮ ದೋಹುಗೆ ರೇಗಂಡು ಇಗಾರ್ ಜಹಾಯರು ಅದಿ ಅಂಗಾರ ದೋಹುಗೆ ಮೆಂದಮು ಬಾರ ಜಹಾಯರು ವೈರಲ್ ವೈ ಹಮಯ ಕಣಿ ಮೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ
7: ಅಬದಫ್ಫ ಹಿಲಾವತಕಾಯಕು ಮಾಜಿಗೆ ತಿರಿಯ
8: ಹಿತ್ತಕುಂ ಜಾಗಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವ ಫಣ್ಣಾಣುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
7: ಹಂದಾಂತವ್ಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರುಕೊಲ್ಲಮ್ಮ

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: नवदिह एकेम मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम